अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैक द बेस्ट उजाला रेडियो।

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार

अग्नि संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

वो दिल दिल ही क्या है, वो दिल ही क्या है जो मिलने की दुआ न करे, हम तुझको भूल कर जिंदा रहे, कभी खुदा ना करे।

तो रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए। बढ़ते हैं डी ओपनिंग सेलेक्शन की तरफ, स्पेशली आपके लिए पेश है आज की सुबह के प्रोग्राम में।

ओ हम सफ़र, ओ हम नवा, बेशक हम बस तुम्हारे हुआ, मेरी तो सारे सवेरे बाहों में तेरे। ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुने हैं। बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो, बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो, ख्यालात ऐसी हो कि कभी गम ना हो, दिल के कोने में इतनी जगह रखना, दिल के कोने में इतनी जगह रखना कि खाली खाली सा लगे जब हम ना हो। A very good morning, Mr. Sher Singh. Danach se. Hey, Andrew and Chit.

0: द टॉक ऑफ द टाउन जुबिन नौटियाल से आपने सुने। ये उजाला रेडियो है, कविता रानी के साथ एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। यादार है वो रॉय रघुनाथ वेरन हे लखो ये मोर्ख रॉय ऐसा वेर ऑफ द टैक्सी से तो नतूर्लक हे एन अम्स्टरडम में मौसम थोड़ा सा अभी बदली छाई हुई है। और आपके शहर में मौसम कैसा है आप थोड़ा सा कष्ट उठा के बता दीजिएगा। पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पूछा ने हाल किसी का तो किसी ने रो दिए, पानी में अक्ष चांद का देखा तो रो दिए, पानी में अक्ष चांद का देखा तो रो दिए, बादल फसा में आपकी तस्वीर बना गया, बादल फसा में आपकी तस्वीर बना गया, साया कोई ख्याल का गुजरा तो रो दिए। तो ऐसे ही होता है जब कोई ज़्यादा ख्याल में आता है, याद आते हैं तो कभी कभी इंसान रो देता है।
1: तुम्हारे सिवा कभी और कोई नजर ना आया, दिल में झांक कर जब भी देखा तुम्हें पाया।

तुम हो दिल में धड़कन में सवाए भक्त के ज़रिए आपने गीत को सुना है। अगर मैं ये व्हाट्सएप की तरफ देखूँ तो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और नंबर व्हाट्सएप का 9 20 363 9 8 9 8 ये स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर है, 9 20 363 9 8 9 8 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो सीधा स्टूडियो में आ जाएगा। ये ना सोचो कि खरी राह तकदीर मिले, ये ना सोचो कि खरी राह तकदीर मिले, ख्वाब देखो कि किसी ख्वाब की ताबीर मिले।

0: पर भोरे भोरे बादल है, तो ये बादलों के पीछे सूरज छुपा है, तो आज जरूर से निकलेगा। कितने देर तक छुपेगा?
1: अब है तू नींद हूँ मैं दोनों मेरे,
0: तो छुपने वालों से कह दो कि सामने आए
1: रोज यही
0: और दिल बहलाए।
2: Hey, this is you are and this is Kavita Rani.
1: But
2: KR for you are.

शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, वाह आतिफ असलम की मधुर आवाज में ये गीत को आपने सुना। आतिफ असलम रियली अ रॉक स्टार। मैं इश्क में मैं तेरा इश्क बन जाऊं तो क्यों ना।

मैं इश्क तेरा बन जाऊं और मेरी चाहत तो तू ही है, ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम मुझसे रूठ से गए हो, तुम मुझसे रूठ से गए हो, तुम्हें मनाऊं तो कैसे मनाऊं।

मांगे प्यार मांगे रे, कभी जज्बों कभी ख्वाबों की तिजर्रत करके, कभी जज्बों कभी ख्वाबों की तिजर्रत करके, दिल ने दुख दर्द कमाए हैं मोहब्बत करके। तुम जब आओगे तो महफूज मिलेंगे तुमको, तुम जब आओगे तो महफूज मिलेंगे तुमको, हमने दफनाए हैं कुछ ख्वाब अमानत करके। एक ज़रा सी भूल हुई और उसे खो बैठे, एक ज़रा सी भूल हुई और उसे खो बैठे, हमने पाया था जिसे, हमने पाया था जिसे, बरसों इबादत करके।

कर सको तो सनम एक काम करो। राज नंदिनी से आपने गीत को सुना उजाला रेडियो के जरिए। घड़ी की तरफ मैं देख रही हूँ तो 10 मिनट बाकी है 10 बजने में। 3:14 स्टूडियो टाइम, 10 बजे आपको याद है कॉफ़ी टाइम मेरे साथ, और या कमर्शियल ब्रेक के बाद कॉफ़ी टाइम 10 बजे। तो इस 10 मिनट का जल्दी से फायदा उठाइएगा। बेजुबा इश्क आप सुनोगे

रहेगा कोई गिला, इस कदर प्यार करेंगे तुम्हें। आपकी खातिर, आपकी खुशी की खातिर हजार आंसू बहा देंगे।

0: रोहित चौहान विद सांसों में संभालूंगा मैं तुमसे चुरा लूंगा ना रहेगा कोई गिला इस कदर प्यार देंगे आपकी एक खुशी के खातिर हजार आंसू बहा देंगे कभी ना भूलेंगे आपकी मोहब्बत को कभी ना भूलेंगे आपकी मोहब्बत को हम दूर रहकर भी दिल से दुआ देंगे। और मौसम ऐसे अचानक बदला
1: मौसम अचानक ये बदला
0: The sun shines Dus uw dag kan niet meer stuk De mijne ook niet So let's smile and enjoy Whatever weather is कैसा भी मौसम है दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए
1: मौसम

दिल से आती है सदा कि बस तुम ही हो प्यार मेरा। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हुए जाला रेडियो के प्रोग्राम में 10 बज रहा है। या इफोन दौलत, इट्स कॉफी टाइम एंड यस हाकल्स।

आप और हम और आप, मीलों की दूरियां हैं, मीलों की दूरियां हैं, फिर भी हम साथ मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ गपशप करते हैं।

0: सही राधे राधे परिवार बिहारी अद्ब्रीदा तो मिलके हमने कॉफी पी है एंजॉय खनीत फाय बाकी एंड लात ते स्मेक En laat het ook een hele mooie dag worden vandaag, want de zon schijnt in Amsterdam. Amsterdam Studio EKC Studio 21e programma Aaptek Nusher Hota Hai. Aaptek Pahochta Hai. सफर मोहब्बत का दुश्वार कितना है
1: के पलकों के पीछे छलके तन्हा आंसू कोई
0: बस यही देखना कि
1: सताए वो छलके छलका जाए यूं ही
0: कि कोई वफादार कितना है
1: वो है

एक मीठा मर्ज देने आना तुम कभी। मुझे ये गीत बेहद ही पसंद है, एक मीठा मर्ज देने आना तुम कभी। सफ़र मोहब्बत का दुश्वार कितना है, सफ़र मोहब्बत का दुश्वार कितना है, मगर देखना है कि कोई वफादार कितना है। ये सोच के उसे कभी मांगा है नहीं मैंने, ये सोच के उससे कभी मांगा नहीं मैंने, उसे परखना है कि वो मेरा तलबगार कितना है।

मुरली चुनरिया बस तेरे नाम की। और कभी कभी ये दुनिया कितनी सुहानी लगती है, कभी कभी ये दुनिया कितनी सुहानी लगती है, और कभी कभी कितनी परेशानी सी लगती है। जितना कोशिश करो समझने को उतना ही उलझ जाता है, जितना कोशिश करो समझने को उतना ही मुश्किल लगती है। ये समझे वो महान है, जो समझे वो महान है, जो ना समझे वो नादान है। पर रहता है ये दिल हमेशा, पर रहता है ये हमेशा अनजान। किसी के लिए सवाल है तो किसी के लिए जवाब है। प्या ओरली चुनरिया तेरे नाम की, प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म का नाम है। सोनू निगम की आवाज़ में आप सुनोगे कभी सोचा न था मैंने कि हो जाएगा प्यार।

कभी सोचा ना था मैंने, सोनू निगम एंड सोनाली वाजपेयी से आपने गीत को सुना और ये एल्बम से निकाला गया है प्यार किया तो डरना क्या है। ईसी महारानी भी अलमेर से प्रोग्राम सुन रही है, वेलकम। शायद आप गाड़ी में हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, रास्ते के हालात पर जरूर से ध्यान देना। And you drive safe, आपका सफर जरूर से सफल हो। And you waited, niet gaan bellen. And WhatsApp, tijdens het rijden. Leg dat neer. And have a safe drive.

मोहब्बत हुई है सनम चोरी चोरी, जी दिल तुमने ली है सनम चोरी चोरी। आदनाम सामयन कविता कृष्ण मूर्ति से आप लोगों ने बेहद ही खूबसूरत गीत को सुना, फ्रॉम द फिल्म कर्ज। कुमार सानू को ला रही हूँ आज के प्रोग्राम में, और साथ देने वाली है अलका जी।

ओ दिल चुरा ले चांद सी चेहरे वाले, कुमार सानू एंड अलका जी की आवाज़ों में फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता। आरजू किसी की आज ना टूटे, आरजू किसी की आज ना टूटे, जिंदगी आज किसी से ना रूठे, इश्क बिना क्या जीना, इश्क बिना क्या जीना।

बिंते दिल मिसरिया अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और ये अरिजीत सिंह हर एक तरह के गाने गा लेता है। इस वेरी फैबुलस या सिंगर, आजकल कम ही गाता है। और एक कुछ महीने पहले उसने अनाउंस किया कि वो अब गाने वाला नहीं है, फिर भी देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ फिर भी उसका गीत मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड किया हुए होंगे यहाँ वहाँ पर रिलीज़ होता है। बिंते दिल, कुछ मिनट्स बाकी है 11 बजने में। 11 बजे के प्रोग्राम में आप सुनोगे कमर्शियल्स, और कमर्शियल के बाद में जो घंटा होगा तो उसमें आप ज़रूर सुनोगे पुराना गीत, पुराने गीतों की शौकीनों के वास्ते।

सुबह को लिखती हूँ शाम के इंतज़ार में, सुबह को लिखती हूँ शाम के इंतज़ार में, शाम को लिखती हूँ रात के इंतज़ार में, शाम को लिखती हूँ रात के इंतज़ार में, और रात को लिखती हूँ नींद के इंतज़ार में।

छुप गया भी चांद बदली में, चांद भी शर्मा गया, सारे तारे छुप गए। दिल बेकरार है क्या इसको किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है क्या इसको किसी का इंतजार है, दिल बेचैन है क्या इसको किसी से प्यार है। Ria Kalu, een hele goede morgen vanuit Amsterdam. En hey, Mala uit Horen. Van harte welkom op jahan par bhi ho, jis haal mein ho. Program ko sun rahe, meri awaaz ko sun rahe, mera pyar bhi aapke dil mein pahunche. Ya aapke dil tak pahunche. Hum safar ke liye, hum safar chahiye. और अपने सफ़र पूरा करने के लिए ज़रूर से हम सफ़र चाहिए। Een hele mooie dag toegewenst.

कसम से और बस उम्र भर हम प्यार करते रहेंगे, हम आपके दिल में रहते हैं। लवली सॉन्ग अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू से।

और कब तक सातो जन्म में कुमार सानू एंड अलका जी से। तो हम धीरे धीरे धीरे धीरे चलेंगे पुराना गीत की ओर और आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, ज़रा सा देखूं ये हो जाए फिर हम पुराना गीत आपके लिए।

जाने दिल मेकअप से है तू यारा रब से पहले है तू स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट वॉइस लता जी की साथ देने वाला था सोनू निगम पुराना गीत पुराने गीतों के शौकीनों के लिए और ऐसे में याद करते हैं साहेब इब्राहिम सरल को जो अमसर अमजा तो उसमें प्रोग्राम सुन रहा है

ब्रज संग प्रीत लगाए सजना ओ सजना ओ रामा, किशोर कुमार एंड लता जी फ्रॉम द फिल्म कामचोर।

वाह क्या एनर्जीफुल गीत है, तुझे ही प्यार करते बस करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं रुखसत हो रही हूँ, आपका साथ ना हो तो हम कहाँ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी कहती है आपसे आपकी रानी। जिस तरह से आपने साथ भी दिया, आपने प्रोग्राम सुने हैं, थैंक यू सो मच।

0: लगा आपके साथ ये 3 घंटे बिताने के लिए। आपको याद रहे अपना ख्याल जरूर रखना और अपने प्यार करने वालों को। मिलेंगे आपसे इसी मोर पर अगर रहेगी ये जिंदगानी, तो मिलेंगे जरूर आपसे आपके रानी।
1: मुझे जाना है मेरे ही पास तुझे आना।
0: साइनिंग ऑफ फॉर उजाला रेडियो, कविता रानी
1: तेरी है फिर कैसी देरी।
0: KR फॉर यू आर। मिलेंगे वेरी सून। यू टेक केयर एंड बाय। लव यू ऑल।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

खुशी के साथ गमी है पैदाइश के साथ माल उजाला रेडियो के जरिए सुन वालों मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। अलमीर स्टाद के रहने वाले समस्त परिवार मुन्नीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन लेफ्टाइड फॉन 69 यार verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad mee. Almere Stad ke rehne wale swargiya pita Alam Prasad Munilal, swargiya mata Sukhya Jugan ke beta, behen Stella Siusohai Munilal ke bhai, behenoi Suren Siusohai ke saar, Amrit aur Jayanti ke mamu Varsha Bajnat Misir और वाहिद निजाति के ममुआ ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है जिन्हें लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हो गया है फर्सोर्गिंगस्टहाउस कीकंदीव अलमीर स्थित में। अलमीर स्थित से समस्त परिवार मुनीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन द लेफ्टाइड फॉन 69 यार verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad में स्वर्गीय पिता अलम प्रसाद मुनीलाल और स्वर्गीय माता सुखिया जुगन के बेटा बहन स्टेला शिवसहाय मुनीलाल के भाई बहनोई सुरेन शिवसहाय के सार अमृत और जयंती के मामू वर्षा बैजनाथ मिसीर और वाहिद नजाति के ममवा ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है जिन लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हुआ है फर्सोर्गिंगस्टहाउस कीकंदीव ते अलमीर स्थित सूरीनाम जिसमें निकेरी बोनाकर पोल्डर नंबर 12 के जो रहने वाला था। अर्थी से आखिरी मौका है विदा लेने के लिए आने वाले बृहस्पतिवार आनस्तान दोनदग 1 अक्टूबर ओस्टरड्रेव 15:15 अलमीरे में और अभी शाम के वक्त 5 से लेकर 6 बजे तक दाह क्रिया को किया जाएगा। Uitvaart, ja, crematie is aanstaande vrijdag, aan de Sukruwaar, dotarik oktober, 2 oktober, vanaf 1:30. Begraafplaats, crematorium Westgaarde, ook meer weg, doosopatjes ter Amsterdam, Opsdorp mee. Samen bij die waar, Jan, bij het aanzien in Widden, is gewerkt ook door het behoudtje aan de klem. Ujala Radio, samen bij die waar, Munilal ke doeg mee, Shamil hai, jahan tak aapne sunhe, Ujala Radio ke zirye pesh kiya gaya hai, Mrityu Samachar.

0: Mugello Radio. Lugiana è il tuo mai favorito radio station.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: you are.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linker rijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला सोना चिरैया चिरैया

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी,

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: ये है उजाला रेडियो यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर

अंतिम संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया। ये उजाला रेडियो है जहाँ गीतों के साथ आपके रात और दिन खूबसूरत बन जाते हैं।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया यू आर उजाल रेडियो सबसे बड़का वाला 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
1: चलती है क्या नौ से बारह
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजाला पेश करे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोमदा 1 नवंबर इन मेडवार्ड मैट संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनील रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाइनी इस हाल वाम आविष्कार ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंटेशन जया चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन जोमदा 1 नवंबर टिकट वक्त पे खरीद लेना और प्रोग्राम शुरू होने वाला है फ्रॉम 2:30 रात 8:30 फकलोप्तोह के साथ हैव एन जबरदस्त कॉन्सर्ट तोर खातिर टिकट्स फ्रॉम €15 वक्त पे खरीद लेना via meervaart.nl Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shub Diwali. Doe je.

6:09 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है और वो भी इस महीने सितंबर का आखिरी मंथ। इस देर तक सितंबर मेरे प्यारे सुनने वालों, 30 तारीख सितंबर है और चंद घंटे और तो ये सितंबर महीना हिस्ट्री में गिना जाएगा। लेकिन ये कुछ घंटे इस आखिरी बुधवार का हम आपके साथ मिलकर बिताएंगे, क्योंकि लाइफ एंड आर्ट की वार के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और आज मेरे प्यारे सिनेमालो, कुछ हफ्तों के लिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूं और कुछ हफ्तों के लिए एक मशहूर म्यूजिकल जोड़ी का प्रोग्राम हम सजाएंगे, जिनका नाम है कल्याण जी आनंद जी। 250 मूवी लगभग हिंदी फिल्म मूवीज के लिए ये दो महान फनकार अपना संगीत दी है और बहुत सारे खूबसूरत हिट्स हमें दी है। कल्याण जी तो अब हमारे साथ नहीं रहा, आनंद जी अब भी है, लेकिन इनके कुछ यादगार नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों आज से हम शुरू करेंगे प्रोग्राम बनाने का। और प्लेलिस्ट में जैसे मैंने कहा इनकी यादगार गाने शामिल हैं और आने वाले बहुत सारे हफ्तों के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है 6-7 शायद 8 भी होंगे, प्रोग्राम हम सजाएंगे ये मशहूर म्यूजिकल डियोजी का। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर तरह के म्यूजिक इन्होंने बनाए हैं और इन दोनों का म्यूजिक जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकर पकंद क्या कहूँ, एक पहचान ये दोनों ने बना कर रखे हैं और हम सभी पसंद करते हैं और शायद ये भी नहीं जानते हैं कि इन दोनों ने अपना म्यूजिक दी है। बड़े बड़े और सभी नामी सिंगर्स के लिए कल्याण जी आनंद जी ने अपना म्यूजिक दी है, बहुत सारे नामी सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया है और तरह तरह सिंगर्स कलाकार सुपरस्टार हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं। तो आज एक छोटा झलक आपको सुनाएंगे, बस यही उम्मीद तराशा के साथ कि आप भी भरपूर एंजॉय करेंगे हमारे ये प्रोग्राम के दौरान। मेरे प्यारे से नॉलो स्टूडियो में अवश्य आप ऐप कर सकते हैं 0303 9000 0303 9000। और रहे दफ्तर की कार्रवाई, मेरे प्यारे सुनने वालों आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तार के जरिए आप अपना कामकाज निभा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको तार करना है दफ्तर के तार पर 0304 9909 0907। उजाला रेडियो का दफ्तर का तार का नंबर 0304 9909 0907। या तो कीजिए 24 घंटे 7 दिन लगातार आप मेल के जरिए भी, जो और भी आसान है, अपना कामकाज आप करवा सकते हैं, दिवा सकते हैं। फरमाइश जरूरी खबरें, जैसे मैंने कहा मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते तो आप किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल मेल कर सकते हैं info@ujala.nl। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म 1978 का नहीं हती बिग ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म डॉन के बात हम कर रहे हैं। ये फिल्म के लिए भी कल्याण जी आनंद जी ने अपना म्यूजिक दी है और बहुत सारे खूबसूरत गाने ये फिल्म में हैं। कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक छोटा रूप में आपको हम सुनाएंगे और उसके बाद में एक नगमा अनजान साहब जी का लिखा हुआ जो किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे।

जी अनान जी के साज और संगीत पर। तो लीजिए चलिए आज ओपनिंग करता हूँ कल्याण जी अनान जी की म्यूजिक्स के साथ और गाने जो हमने बयां की हैं।

0: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया और मैं हूं कौन। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, म्यूजिक के साथ कल्याण जी आनंद जी, इन्होंने ये गीत गाए हैं और अनजान साहब जी ने खूबसूरत गीत को लिखा। फिल्म का नाम डॉन, मेरे प्यारे सुनने वालों, डॉन, जिसमें असली डॉन टीनेज ग्रेट एंग्री यंग मैन दबिक भी अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, सिनत अमान के साथ कमल कपूर, हेलन प्राण साहब जी, इफ्तखार ओम शिवपुरी, मैकमोहन शेट्टी, सत्यन कपू और मेरे प्यारे सुनने वालों चंद्र बारो जी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहा, इन्होंने ये मूवी को डायरेक्ट किया है। फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और इस आखिरी सितंबर का जो बुधवार है, देर तक सितंबर, इट गैट अलमाल सो स्नेल, एक कम दाग तो कोर्ट, मेरे प्यारे से नोलो, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बैन अनत रेस, और भी वक्त चाहिए, एक दिन का घंटा 24 ना हो, 36 होने दो, और एक हफ्ते 7 दिन नहीं 9 दिन बना लो, है ना, तभी तो मजा आएगा। मेरे प्यारे सुनो लो, मैं कल्याण जी आनंद जी का प्रोग्राम आज सजा रहा हूं इनकी खूबसूरत गाने, नटुलक कोशिश हमने किया है बहुत सारे जाने पहचाने नगमाएं आज के प्लेलिस्ट में सजाने का, लेकिन कुछ छुपा हुआ भोला हुआ ही राज भी है इसमें भी, जो आप तक हम पेश करेंगे। वन दत्त मुतुआ नटुलक ओकनीत फरखेत की बहुत सारे गाने पॉपुलर हुए हैं और बहुत सारे गाने कुछ कम पॉपुलर हुए लेकिन खूबसूरत है, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको ले चलेंगे एक गीत की ओर, पार्टी सॉन्ग की ओर, ये भी अनजान साहब जी का लिखा हुआ है, और वंस अगेन ऑफ कोर्स म्यूजिकल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, महेंद्र कपूर जी, और मैं देखता हूं जानू है पिकदार तुई नाम स्थान मद फोकस में सब आशा ईव खुद क्या कि हाँ आशा जी और महेंद्र कपूर जी। पेश करता हूँ फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर, ये भी नहीं थी नख्तन सेव तक का फिल्म है, मेरे प्यारे सुनने वालों एंजॉय।
1: Virtual DJ.
2: You like it?

यस यस यस यस, प्यार जिंदगी है और प्यार भी बंदगी है। खुद मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि महेंद्र कपूर जी के साथ साथ नाइटिंग आशा जी और लता जी ने भी मिलकर गीत गाए हैं। एक दादा तालियां आशा बस, लेकिन लता ने भी गाए हैं। अंजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा और कल्याण जी अनहन जी की ग्रेट म्यूजिक। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। और मेरे प्यारे सुनने वालों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये मूवी अभी चलेंगे तो हम देखेंगे, चाहे बीच में चाहे शुरू से। और ये फिल्म हमने लगभग शायद 100 बार देख चुके होंगे। प्रकाश मेहरा जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी। द बिग बी अमिताभ बच्चन, द ग्रेट विनोद खन्ना, रेखा जी गुलजार, राखी राखी गुलजार, रंजीत अमजद खान, कादर खान, निरूपा रॉय, डॉक्टर श्री राम लागू, इन सभी का फिल्म है, जिसमें यूसुफ खान भी है और हु है थी मायूर, हाँ जी मायूर, जो लिटिल बिग बी का रोल अदा किए हैं। मेरे प्यारे से नोल, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.nl। कल्याण जी अनान जी मेरे प्यारे से नोलो, इनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और जैसे मैंने कहा, लगभग 250 हिंदी मूवीज के लिए अपना संगीत दी है और हम इस वक्त 70s में हैं। धीरे धीरे हम 80s के उस पार अभी जाएंगे नहीं। फिलहाल ये प्रोग्राम में गाँव नीट फॉर बाय द यार 80, वो ब्लाइव नोग इन द यार 70 एंड दा गाँव सक नार 60 एंड वट आउडर, ठीक है, क्योंकि इतने सारे गाने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। हमने सोचा आज 80s के उस पार हम जाए ना। एंड साहबान अतुलक बहुत सारे अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले हैं, जैसे हिमालय की गोट, जिसके संगीत भी हम चलाएंगे जरूर से जरूर, उपकार के लिए, फिल्म संजीर के लिए, जिसके गाने भी अभी कुछ देर के बाद हम आपको सुनाएंगे। दोन के तो हमने सुना चुके हैं और कुर्बानी भी म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नॉमिनेशन मिला है। त्रिदेव के लिए भी मिला फिल्म बैराग, जिसमें दिलीप साहब जी ने 3 रोल अदा किया है। और ये तो है फिल्म फेयर अवार्ड। मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री भी मिले हैं इन दोनों को, और ना जाने कौन कौन अवार्ड्स भी मिला है। ग्रेट म्यूजिक, बहुत खूबसूरत म्यूजिक इन दोनों का, और काफ़ी कॉपी किया जा रहा है आजकल, और क्यों ना करें, मैं तो कहता हूँ कि कर लो, लेकिन अगर आप करें तो कोशिश करूँ कि इसे एक ऐसे रूप में आप पेश करें जो इस टाइम में सूट होते हैं। हाथ नीत स्लेक्टर मार्क मार्कत फिल्म मोयर, तू जाने तो। हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम दो मुसाफिर, और दो मुसाफिर इत्तफाक से भी एक फिल्म है 1978 का, नहीं थी नाखन से ही। और मैं जो गीत निकाले हैं दमू तक वेल इफ स्पीक और या एक तख्त था, तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, क्या बात है। किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल मिलकर गीत गाएंगे। हशमत साहब जी का लिखा हुआ एंड ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक।

तेरे जैसा सागर में मोती नहीं, तेरे जैसा अंबर में कोई तारा नहीं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हशमत साहब जी का लिखा हुआ, कल्याण जयराम जी की साज और संगीत पर अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार ने मिलकर गीत गाए हैं। फिल्म का नाम दो मुसाफिर मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म 1978 और ये खूबसूरत मूवी का जो डायरेक्टर है, अरे लिखा नहीं, शशि कपूर और रेखा का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देख रहा हूं कि वक्त जो है बहुत आगे निकल गए हैं और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 7 बजे के इश्तिहारी की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। अगले मूवी जिसमें से गीत हम निकालेंगे, ये एक आखिरी मूवी होंगे 1978 आज के लिए 1978 का मूवी अतिथि से हम नगमा निकालेंगे। एक नगमा जो फिर एक बार किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल मिलकर गाएंगे, साथ देंगे कंचन और अनजान का लिखा हुआ गीत है, अनजान साहब जी इनका लिखा हुआ गीत है, कल्याण जयराम जी संगीतकार और गीत का बोल है, गा के जियो तू गीत है ये जिंदगी, पेश करता हूँ हीरो निवार।

के जियो तो गीत है ये जिंदगी। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनोलो अनजान साहब जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी की साझा और संगीत पर किशोर कुमार, अनुराधा बोडवाल और कंचन जी। फिल्म का नाम अतिथि और ये फिल्म 1978 का है। नीहति नख्तन सीवन तक अरविंद सेन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और शशि कपूर, शतगोन सुदुर्गन सिन्हा, विद्या सिन्हा, शबाना आजमी, उत्पाल दत्त जी, मैकमोहन, देवन वर्मा एंड द ग्रेट भारत भूषण जी ने फिल्म में काम किया है। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो बीता जा रहा है, कोशिश करता हूँ इस घंटे में दो नगमाएं और आप तक पेश करने का और दरखात से ही करवा लूंगा। और व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों ऐप कर रहे हैं 0303639909 पर। अभी कुछ देर में हम जाकर देखेंगे कौन है। अभी से आप सभी ऐपर्स को हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। इंदौर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूँ और निकालूंगा ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, जो है 1977 का मूवी फिल्म दरिंदा, फिल्म 1977 तक मेरे प्यारे सुनने वालों। यीशुदास की खूबसूरत आवाज और कंचन जी का लाजवाब बेमिसाल आवाज में गीत आप सुनेंगे। इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में कल्याण जी अनान जी की ब्यूटीफुल म्यूजिक, और का लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप एंजॉय करें ये नगमा के साथ।

प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग कच्चा है उठर जाएगा। खूबसूरत आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, कंचन जी और येसुदास ने मिलकर गीत गाए हैं। इंद्रवर का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी दरिंदा, मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म 1977 का, कल्याण जैना जी जिसका संगीतकार, कौशल भारती जी मूवी दरिंदा का डायरेक्टर है और हमारे प्रिय श्री सुनील दत्त साहब जी ने फिल्म में काम किया है फिरोज खान के साथ, परवीन बाबी, मदन पुरी, प्रेमनाथ। इस घंटे का आखिरी गीत, जैसे मैंने कहा, मेरे प्यारे सुनो, सेवा में पेश करने जाएंगे। एक डांस सॉन्ग है, फनी सॉन्ग है, मस्ती भरी गीत है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। नाइटिंगेल आशा जी और महेंद्र कपूर जी को आप सुनेंगे कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। फिल्म का नाम कसौती और ये फिल्म 1974 का है। निहतिन फिरन सेवंत, अरविंद सेन मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्राण साहब जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी का एक फिल्म। एंजॉय मेरे प्यारे सिनेमा, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

या पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, लोग भी बदल जाते हैं, तू जाने तो। सुरों का बादशाह द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, कल्याण जी आनंद जी जिसका प्रोग्राम हम आज पहला सजा रहे हैं और कुछ हफ्तों के लिए कल्याण जी आनंद जी का ही प्रोग्राम हम सजाएंगे ही रविवार हर एक बुधवार के रात्रि को 6 से 9 बजे। फिल्म का नाम बैराग। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1976 का एक फिल्म, फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुआ है, लेकिन मुझे तो फिल्म बहुत खूबसूरत लगा और गाने भी ये फिल्म का सभी लाजवाब बेमिसाल है। बैराग फिल्म आसिद सेन जी का डायरेक्ट किया हुआ है और जिसमें दिलीप कुमार जी, द ग्रेट दिलीप कुमार जी का 3 रोल है, एक बाप का

दो बेटे, एक बुड्ढू बेटा और एक जेंटलमैन, तो जाने मॉडर्न बेटा। सहरा बानू भी साथ दिए हैं, लीना चंद्रवरकर, हेलन जी, प्रेम चोपड़ा, पिंटल भी है, नजीर खान, मदनपुरी और सुचित कुमार। मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ,

0: Ja, er was een jas voor mijn klok. Dat kan toch niet? Sama saat ka vakt hai mere pyare suno walon, this ko to receive aur live and direct QRK studio Rotterdam se aap sun rahe hain Back to the Future. मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार आप सभी प्रिय सुनने वालों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है. शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं. जो लोग काम पर है तो दिल लगाकर काम करना, सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के गाड़ी चलाना, या जो भी आप कर रहे हैं फिट्स अवलोकन संभाल के. आप विदेश में गए हैं तो एंजॉय, और विदेश से आए हो हमारे इस देश में तो भी एंजॉय. और अगर आप खा रहे हैं तो स्वादिष्ट भोजन हो. En ben je nog aan het koken? Nog even geduld, dat is zo klaar. En dan smakelijk eten voor straks, toch? Le chalte aapko agle geet ki aur mere pyare sunne walon. अगले गीत जो है मैं निकालूंगा फिल्म जिसका नाम है खून पसीना. खून पसीना 1977 का है फिल्म. अंजान साहब जी का लिखा हुआ गीत. नाइटिंगेल आशा जी की आवाज. काफी दिनों हो गया मैंने ये गीत को नहीं सुना, शायद आप भी. कल्याण जान जी ऑफकोर्स संगीतकार है मेरे प्यारे सुनने वालों. राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के पेश करता हूं नाइटिंगेल आशा जी.
1: हाय हाय हाय हाय हाय राजा.

राजा दिल मांगे चवन्नी उचाल के नाइटिंगेल आशा जी की आवाज मेरे प्यारे से नहलो अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुना है कल्याण जैनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम खून पसीना मेरे प्यारे से नहलो 1977 का फिल्म है निकटीन सीव नंसीव और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है राकेश कुमार अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना रेखा निरूपण रॉय कादर खान द ग्रेट भारत भूषण जी और हेलन असरानी साहब जी अमजद खान इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। एपर्स हम आपको भुलाए नहीं लेकिन अभी हम आते हैं आप लोगों की ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। मैं आपको ले चलेंगे छेड़छाड़ सॉन्ग की ओर मेरे प्यारे सुनवालो। एक नगमा जो वार है पे कम्फर्ट स्टॉप तार है पे कम्फर्ट स्टॉप वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनवालो। एक छेड़छाड़ नगमा जो मिलकर गीत गाएंगे वंस अगेन नाइटिंगेल आशा जी अब की बार रफी के साथ मिलकर गाएंगे मोहम्मद रफी साहब जी के साथ कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर। फिल्म का नाम छल्लू मेरा नाम या छालू मेरा नाम वो भी हो सकता है ना। ये भी 1977 का मूवी है मेरे प्यारे सिनेमा वालों। एंजॉय

0: तोड़ तोड़ के।
1: हाँ रुक मेरी रानी, नाइटिंग लाशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, ये छेड़छाड़ सॉन्ग वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर छालू या छालू, छल्लू मेरा नाम या तो छालू मेरा नाम, आई डोंट नो। मैंने तो फिल्म को देखा नहीं मेरे प्यारे से, नाम मुझे याद है, गाने मुझे मैं जानता हूं, लेकिन फिल्म मैंने कभी नहीं देखा। ये फिल्म 1977 का है, नहीं कृष्ण नायडू जी ने डायरेक्ट किया है और महेंद्र संधू, विद्या सिन्हा, विनोद मेहरा, देवन वर्मा, मदन पुरी, इन सभी का फिल्म है। और मैं देखता हूं हेलन भी ये फिल्म में है। बहुत सारे एपर्स हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और सभी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गाने ले जा रहे हैं उन सभी को पुराने यादों की ओर, तो ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर कुछ ऐसे ही है कि मिलकर हम आप हर एक बुधवार के रात्रि को पुराने यादें जो है मिलकर हम और आप ताजा करते हैं। और अति सो इन रात मैं भी ये महसूस करता हूं कि नगमाएं मुझे कहां कहां लेकर जा रहे हैं और गाने के साथ कुछ जो यादें जुड़े हुए हैं वो भी ताजा हो रहे हैं हमारे दिमाग में कि फिल्म मैंने कहां देखा और किसके साथ देखा, कहां था मैं उस वक्त। तो मैं भी आपकी तरह उसी तरह गीत सुन सुन कर यादें ताजा करते हैं। इफोनोडोलॉजी है डना डंकीवेल आपके आपके लिए, डंकीवेल भी हम कहेंगे, हम हार्लेम का आइलिन जी डंकीवेल आइलिन, अम्स्टलफेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी को भी हम कहेंगे धन्यवाद। और अम्स्टलफेन का कमला जी को भी हम कहेंगे डंकीवेल ऐप करने के लिए। एप्पल दोरन का सफूरा सुब्राती जी आपके ऐप के लिए चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डंकीवेल। और स्टीफन यंग में भी मजा ले रहे हैं, गाने भी उन्हें पुराने यारों की ओर ले जा रहे हैं भैया लक्ष्मण जी। और भैया लक्ष्मण जी आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है, आप एंजॉय करें। कतरीना अट हम सदम भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड या ये फिल्म चून हेल मूवी डंकीवेल कतरीना, इतनी बार बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि हमारी ये चून लोग पसंद करते हैं। फोकस में हैपिक दिस फना फट बखिन, जब से मैं ये प्रोग्राम सजा रहा हूँ तभी से है, और बदलूं क्यों, अगर चीज ठीक है सही है पहचान हो गई है तो मैं उसे क्यों बदलूं। डंकीवेल कतरीना मफरो एंड मनेर बिहारी जी अट ब्रेडा डंकीवेल भी आप कैप के लिए, आप ही एंजॉय कर रहे हैं चून किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भरे तादाद उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं। दनहाग से मिका जी डंकीवेल आप कैप के लिए, खनीत फॉर द सॉन्ग्स हियर ऑफ यू आर। और दनहाग से दूर ऊपर ग्रोनिंगन शहर में जो एक बहुत खूबसूरत शहर है ग्रोनिंगन, एक कुमदार ग्राह इन गवाल, बेटी जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो बेटी जी को कहेंगे भी डंकीवेल चून करने के लिए, आप भी एंजॉय करें। हम वापस आपको ले आएंगे यहाँ रोटरडम शहर में जहाँ पर भैया राजेश सिंह भी आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए भैया राजेश सिंह जी। और रतनाम से सीधे ऊपर अगर आप जाएंगे डनकॉम ये बेड एंड हेल्दर, और वहां से भी ऐप आए हैं इल्स रामदयाल जी का, इल्स भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इल्स जी आपके ऐप के लिए, आप एंजॉय करें और हम वापस आएंगे मार्सब्रुक जो यूट्रेख्त के आसपास है, और वहां से आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ हरेंद्र और चित्रा जी। थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनो, प्रोग्राम को हम आगे ले चलेंगे एक मस्ती भरी गीत सेवा में, मुकेश जी का गाया हुआ पेश करने जा रहा हूं। ये फनी सॉन्ग मस्ती भरी गीत गुलशन मावरा जी का लिखा हुआ है, और अमिताभ बच्चन और मुकेश ये दोनों ने मिलकर गीत गाए हैं। कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर फिल्म का नाम अदालत, और अदालत 1977 का फिल्म है। निहतिन सेवनन सेवद।
0: अरे हमका का समझत हो, का कहा का समझत हो
2: हमका ऐसा।

0: गुलाबी फूल।
1: हम कहा इका दे तो हम कहा फूल का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल।

0: समझ गए हो ना क्या कहा? हाँ
1: अरे हम कहा ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। और एक दिन हमने तो गया था जंगल मा, और वहां मुझे मिल गया था ससुरा ये ताकू। गुलशन मौरा जी का लिखा हुआ ये गीत, मेरे प्यारे सुन लो मस्ती भरी गीत, मुकेश जी ने गाए और साथ दिए थे अमिताभ बच्चन। कल्याण जी आनंद जी संगीतकार, मेरे प्यारे सुन वालो, 1977 निहतिन सिंह से फतह का फिल्म अदालत से निकाले गया है ये नगमा, जिसका प्रोड्यूसर नदिया वाला, डायरेक्टर नरेंद्र बेदी, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, नीतू सिंह, अनवर हुसैन, कादर खान, सुचित कुमार और क्या नाम है, पिंचू कपूर, इन सभी का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनोल, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते तार के नंबर, ईमेल और जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे, चेक अंकेर www.ujala.nl। और ये भी आप सभी को हम बता दें मेरे प्यारे सुन वालों, हमारे इस हफ्ते का कैसे प्रोग्राम होंगे। आज तो मैं हूं, कल वैसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कल मैं आऊंगा प्रोग्राम सजाने, और एक खास कारण था कि मैं नहीं आ सकते, लेकिन हम आएंगे। कल एक तारीख है, पहला दिन नए महीना अक्टूबर का, तो कल हम आएंगे रात्रि में 8 से 11 बजे, पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज, ब्यूटीफुल रोमांटिक और ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे। मोरखन आवंत, पहला दिन नए महीने का, 1 अक्टूबर, दिल की आवाज रात्रि में 8 से 11 बजे शनिवार। लेकिन आने वाले शनिवार हम नहीं रहेंगे, 7:30 दान बैने करनी मैच सैटरडे नाइट फीवर, क्योंकि एक छोटा सा वेकेशन हम लेंगे और हम दूर जा रहे हैं, और वही है कारण कि मैं प्रोग्राम शनिवार को नहीं बना पाएंगे। मार फोकंड वीक, 7 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख दान बैने कर भरपूर, तू जाने तो। उलझन अगले मूवी का नाम, मेरे प्यारे सुनो लो, उलझन 1975 का मूवी है, 1975। एक नगमा हशमत साहब जी का लिखा हुआ, और हशमत जी ने कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, बहुत सारे खूबसूरत गाने हशमत जी ने लिखा, फिल्म से कहना है नीत मयूली कैन नंबर्स वेल, और हम इन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से, इनकी कलम से इतने सारे खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है। हाँ, बना रहा हूँ प्रोग्राम कल्याण जी आनंद जी का, जिनकी म्यूजिक लाजवाब बेमिसाल है, लेकिन लिखने वाले हशमत जी को हम नहीं भुला पाएंगे। और खूबसूरत गीत इन्होंने लिखा है, ये एक दर्द भरा नगमा है, लेकिन बहुत सारी चीज इस गीत में इन्होंने कहा है, और किशोर कुमार के मुखाने वो नगमा मैं पेश करने जा रहा हूं। और जैसे मैंने कहा, मूवी का टाइटल सॉन्ग है, फिल्म का नाम है उलझन, 1975।

अपनी उलझन में, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, हशमत साहब जी का लिखा हुआ गीत किशोर कुमार ने गाकर सुनाए हैं। कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर फिल्म का नाम उलझन, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1975 तक का है, 1975। रघुनाथ जलानी जी ने डायरेक्ट किया है और संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित, दगड़ेत अशोक कुमार, फरीदा जलाल, उर्मिला भट्ट, विजू खोटे, रंजीत, इंदु शिवराज, आसरानी साहेब जी आगा, अरुणा रानी, पिंचू कपूर, मुराद साहेब जी, यूनुस परफेज, ओम शिवपुरी, ये सभी ने काम किया है। Ik hoop dat we nog in de jaren 60 komen, mijn lieve Sinoa. Lekin, waha aane ke liye rasta kafi lamba hai. Aap ye socho ki 250 Hindi movies ke liye Kalyan ji Anand ji ne apna sangeet di hai. En ik ben Ratan niet als ik niet uit alle films liedjes heb meegenomen. Pure 250. Klinkt een beetje als gabber. Kitne samba. Pure 250. Dil dena buri bala hai. Agle geet ka title hai. Aur ye nagma Gulshan Maura ji ne likha. मिलकर गीत गाएंगे उषा मंगेशकर और कंचन जी, कल्याण जी, अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम रफू चक्कर। रफू चक्कर और फिल्म 1975 का है, 1975। पेश करता हूं

या दिल देना बुरी भला है और भूली भला है, सपने कहाँ है, लेकिन क्या करे हम तो ये दिल दे बैठे दे बैठे दे बैठे। उषा मंगेशकर जी और कंचन जी की आवाजें, गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ ये नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी अनान जी की साज और संगीत पर। रफू चक्कर फिल्म का नाम है, 1975 का मूवी, नरेंद्र बेदी जी ने डायरेक्ट किया है, ऋषि कपूर, पैंटल, नीतू सिंह, आसरानी, राजेंद्र नाथ और ना जाने कितने और लोग, जैसे कि मदन पुरी भगवान दादा, अनवर हुसैन, सुलक्षणा जी, मुमताज बेगम, के एन सिंह, मैक मोहन, नरेंद्र नाथ, विजू खोटे, बड़े सापरू जी, फरियल मनमोहन, शेट्टी, जग्गू, ये भी काम किया है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मन चाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूं आपका यारो क्या रतन राम दुलारे पांडे और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 8 बजे की ओर। एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए क्यों, क्या ख्याल है। राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग जो मिलकर गाएंगे लता जी और किशोर कुमार, कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म फरार का नगमा और ये गीत फिल्म में कई बार आए हैं, लेकिन प्यार भरा फिर चिन्ह आज आपको हम सुना रहे हैं। हीरो निवाड़

मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन होना झूठो। लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, डगड़ेत राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर। फिल्म का नाम फरार, मेरे प्यारे सिनेमालो फरार 1975 का मूवी है, 1975 तक शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट क्या हुआ फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर ने काम किया है। स्वागरी हंस लप्तन सिंह को अरसु तमीर दंकीवाल आपके ऐप के लिए, स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी अरसु तमीर एंजॉय यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर एंड फॉर ऑल द सॉन्ग्स ऑन कल्याण जी आनंद जी। एक गीत किशोर कुमार का हम आपको सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, इंदौर का लिखा हुआ फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा, जो फिरोज खान ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, काम किया है हेमा मालिनी के साथ। ये नगमा के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर।

से तू बच पाएगा, मुझको धोखा देने वाले आज तू धोखा खाएगा। किशोर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुन वालों, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ ये धमाकेदार नगमा जो हमने सेवा में पेश किया है, कल्याण जी अनान जी जिसका नटूरल प्रोग्राम जो हम सजा रहे हैं, संगीतकार है। 1975 नेगेटिव 57 का फिल्म चोरी मेरा काम, चोरी मेरा काम से नगमा निकाला गया है। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर ब्रिज और जिन पर ये नगमा पिक्चराइज किया गया है, फिल्म में प्राण साहब जी, शशि कपूर, सीनत अमान और द ग्रेट अशोक कुमार, देवन वर्मा, इन सभी ने ये मूवी में भी काम किया है। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 8:00। मैं जानता हूं एक फिन सेल्फ हो ग्लोक, क्योंकि नगमाएं कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये वक्त बस निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। वक्त तो मेरे लिए भी नहीं रुकेंगे, आपके लिए भी नहीं रुकेंगे, इस प्रोग्राम के लिए भी रुकेंगे नहीं, चाहे आंधी हो या तूफान। ये वक्त इन बहुत साहब कि भैया जो भी हो यौता किस ओम फोरत खान नीत स्तोप खोन डोर डोर तखान। तो इनसे भैंस तो हम फिलहाल नहीं करेंगे, बंद है खा तो नहीं लाइस्टर तू जाने तो। जेनी डंकीवेल, जेनी फॉर ये अपीयर, डंकीवेल डंकीवेल जेनी। मैं हशमत साहब जी का एक नगमा तैयार करके रखा हूं, 1974 का मूवी फिल्म कोरा कागज का एक नगमा जो लता जी गाएंगे कल्याण जी अनान जी की साज और संगीत पर। कोरा कागज इतनी हतीन फिरन से ही वंतख रूठे रूठे पिया मनाऊं तुम्हें कैसे।

अरे प्यार से रूठे रूठे प्यार मनाऊं कैसे, प्यार से मनाऊंगी तो कैसे मानेंगे नहीं। लता जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो लो, हेशमत साहब जी का लिखा हुआ खूबसूरत गीत लता जी ने गाए हैं कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। 1976 का फिल्म कोरा कागज से हमने नगमा को निकाले। इतनी दिन फिरन से कोरा कागज अनिल गंगुली ने डायरेक्ट जो किया है, जया बच्चन और द ग्रेट विजय आनंद, गोल्डी आनंद, इन दोनों का एक फिल्म है जिसमें सीमा और रमेश देव भी है, अंशला सखदेव, ए के हंगल, देवन वर्मा, नाजनीन चुलक्षना, द ग्रेट भारत भूषण जी। प्रभा जी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं आमस्टरडम सेंटर में, हेल लद्दाख वेरक, लेकिन अब आराम से सुन रहे हैं प्रोग्राम और हमेशा प्रभा जी चून किए करते हैं अब द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। धन्यवाद प्रभा जी एट आमस्टरडम सेंटर, आप ऐप करते हैं तो दिल खुश हो जाते हैं क्योंकि आपका रेडियो सुबह और रात तक उजाला ही उजाला पर आप चून किए करते हैं। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सिनोला, मैं देखता हूं एक रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग है। हाँ जी, रोमांटिक भी है लेकिन छेड़छाड़ भी है। किशोर कुमार और लता का एक नगमा, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ नगमा है। किशोर जी और लता जी गीत मिलकर गाएंगे कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। ओकन फिल्म इतनी हतीन फिरन से 1974, फिल्म का नाम हाथ की सफाई। कि हमको तो मोहब्बत हो गई है तुमसे और तुमको भी मोहब्बत हो गई अरे हमसे।

तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको तो मोहब्बत हो गई है तुमसे, अब तो मिल जाएगा वो खजाना जिसके पीछे है ये सारा जमाना। किशोर कुमार और लता जी मिलकर गीत रोमांटिक जिसमें भी इतनी छेड़छाड़ है मिलकर गीत गाए हैं। गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ और गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ ये गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं कल्याण जी आनंद जी की साझ और संगीत पर। फिल्म मेरे प्यारे सिनवालो 1974 का फिल्म हाथ की सफाई, प्रकाश मेहरा जी, डायरेक्टर रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, इन दोनों पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है। ये फिल्म में काम किया है और इन दोनों के अलावा विनोद खन्ना, सिमी गढ़वल, सापरू साहब जी, रंजीत, सत्यन कपूर ने काम किया है। उजाला रेडियो है और मैं देख रहा हूं ऐप आए हैं लेडन से और वो भी स्वागरी सरवन नाइगी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुरुख फन फकांसी स्वागरी और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। एंजॉय एंजॉय क्योंकि कल्याण जी आनंद जी की खूबसूरत गाने आज के सिलेक्शन में है, एक एक निकाल कर पेश कर रहा हूं। थैंक यू वेल फॉर योर अपीयर। 1973 के ओर ले चलता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों। 1973 एक फिल्म जिसके साथ अमिताभ बच्चन मशहूर हुए हैं, नाम बनाए हैं, उसके बाद में इनकी करियर जो है चला और ये फिल्म भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, ये गीत भी जीता है। मन्ना डे का एक नगमा निकाल रहा हूं, मन्ना डे दादा मन्ना डे जी का गाया हुआ, गुलशन मौरा जी का लिखा हुआ नगमा है कल्याण जी आनंद जी की साज और संगीत पर। From the movie संजीव रजनी हतीन द्रियन सीवंत कहाँ है, हाँ यहाँ है, पेश करता हूँ।

वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, यार ये है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, दोस्ती हो तो ऐसा, और इतने खूबसूरत प्यारे शब्द गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ। एंड ऑफ कोर्स फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ एक नगमा है फ्रॉम द मूवी संजीर, जो 1973 का एक फिल्म है, नीह तिंद्रियन सी मतलब मन्ना डे जी और कल्याण जानान जी का म्यूजिक। प्रकाश मेहरा फिल्म संजीर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमिताभ बच्चन को रोल मिला है और जया बच्चन जी के साथ अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन को रोल मिला है नादात दिलीप कुमार हीफ खवैखर, धर्मेंद्र हीफ खवैखर, राजकुमार हीफ खवैखर, देवानंद हीफ खवैखर, और अमिताभ बच्चन को रोल मिला है दांग से जवेद और सलीम जी, और कोई हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ तैयार नहीं था ये फिल्म में काम करने के लिए। बोली ये तो वैसे तो एक्ट करता है खूबसूरत, लेकिन इनकी जितनी मूवीज भी रिलीज हुए हैं संजीर से पहले सभी फ्लॉप साबित हुआ है। तो जया बच्चन जी एक दिन वेलाल टून हाल फॉर लीफ वॉस अब दिलांग, और तो इन्होंने कहा कि ना ये एक साथ हम काम करब वंत ये एक दिन बनी बरका, और जया हाथ खलाइक, और प्राण साहब जी कमाल का रोल इन्होंने अदा किया है भी फिल्म में, अजीत बिंदु सत्यन कपूर इफ्तखार मोई फिल्म संजीर। और आज के लिए ये नगमा जो सबसे टॉप नगमा है फिल्म का जहाँ तक मेरा ख्याल है निकाल कर आप तक हमने पेश किया है। एक और मैं देखता हूँ स्वागरी सुन रहे हैं प्रोग्राम, स्वागरी और सरहज, और वो भी अलमेर बैठे में राज और आरती नंदन डंग क्यूलिवेल खनीतर फन फयुली आवंत एंड फन यू आर फन बैक टू द फ्यूचर। मेरे प्यारे सुनो, मैंने गीत जो तैयार करके रखा है मुकेश का एक नगमा है द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी, ये एक नगमा यकीनन आप पसंद करेंगे क्योंकि एक एक शब्द जो लिखा गया है जो गाया जाएगा बहुत मतलबी है। राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा, मुकेश जी गाकर सुनाएंगे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साज और संगीत पर, 1973 का फिल्म कहानी किस्मत की का नगमा पेश करने जा रहा हूँ। हीरान यू आर

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, इंसान हंसे या रोए, मैं तो गीत में हमेशा की तरह गुम हो जाते हैं। क्या होना है, कब होना है, लिखने वाला बस जाने। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ नगमा मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं कल्याण जी आनंद जी की साझ और संगीत पर। फिल्म का नाम के यानी कि कहानी किस्मत की, और कहानी किस्मत की अर्जुन हिंगो रानी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी है। इसमें द ग्रेट भारत भूषण, धर्मेंद्र जी, रेखा अजीत और राजेंद्र नाथ, मैं देखता हूँ यूनुस परवेज, सुलक्षणा हीरालाल, यंकी दास ने काम किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी एंजॉय कर रहे होंगे। 9 मिनट गुजर चुके हैं 8:30 9 हो चला है, 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। मतलब ये कि अधिक 20 मिनट नो राजेंद्र कृष्ण जी का एक और नगमा अब की बार किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे कल्याण जी अनान जी के साथ और संगीत पर। फ्रॉम द मूवी 5 राइफल्स से हम नगमा निकालेंगे, और 5 राइफल्स 1974 का फिल्म है, 1974। तेरा हुस्न लाला और तेरा रूप राम राम, तेरा हुस्न लाला और तेरा रूप राम राम।

तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह और तेरा रूप राम राम। या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरा प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज और राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार ने गाए हैं। कल्याण जी अनान जी जिसका आज पहला प्रोग्राम सजा रहे हैं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में। En we gaan een aantal weken, 6, 7, misschien wel 8 programma's van Kalyanji Anandji maken. Met de best of the best of Kalyanji Anandji, here on you are. Or Wobhi, back to the future mee. Je tha film Five Rifles, mere pyare sunwalo. Or film 1974 ka hai, 1974. Ayush Johar film ka producer, director or actor. जिसमें राजेश खन्ना भी है, अंबिका जोहर, शशि कपूर, कमल कपूर, सापरू साहब जी, मुराद साहब जी और शम्मी कपूर।

अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक नगमा जो लता जी गाकर सुनाएंगे। और ये गीत पहले बहुत फरमाइश किया जाता था, पता नहीं आजकल होता है या नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है नहीं हो रहा है। और कल्याण जी आनंद जी का जो सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे फरमाइश सॉन्ग्स हैं। और तू तो जाने हैं, आप सभी जो मुझे जानते हैं, आप सभी को तो मालूम है कि मुझे फरमाइश सॉन्ग्स, शादी विवाह, लोरी वाला सॉन्ग, इस तरह के नगमाएं मुझे काफी पसंद है। तो चलो ये नगमा जो अनजान साहब जी ने लिखा, लता जी गाकर सुनाएंगे, कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर निकालेंगे 1970 का मूवी फिल्म जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म जॉनी मेरा नाम से गीत निकालेंगे और आप तक मैं पेश करता हूं ये नगमा।

बाबुल प्यारे ओ रोये पायल की छमछम, लता जी की आवाज। मेरे प्यारे सुन वालों, अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा लता जी ने गाकर सुना है कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। 1970 का मूवी जॉनी मेरा नाम से हमने नगमा को निकाले। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गोल्डी आनंद, विजय आनंद है, देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण साहब जी, प्रेमनाथ, आयुष जोहर का एक फिल्म जिसमें जीवन भी है। मेरे प्यारे सुनो, वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं, और क्योंकि इस तरह के फरमाइश सॉन्ग हो रहे हैं, हमने पेश किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी में एक और हो जाए। ये वही तो है खौर फन, हमें मौका ना दिए। एक गीत है इंदवर का लिखा हुआ, महेंद्र कपूर जी की आवाज, फ्रॉम द मूवी पूरब और पश्चिम, और ये फिल्म 1971 का है। नहीं नंसी वंतक, कल्याण जी अनान जी संगीतकार, मनोज कुमार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर ये फिल्म का, विद सैरा बानो, प्राण, ओम प्रकाश और मदन पुरी। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया मेरे प्यारे सुनने वालों, तमाम एपर्स को भी। हम आप सभी से कल मिलेंगे, मोरखन आवन दन बने कर फन 8 इन द आवन टोट 11। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल, बाय।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: फागुन फगुआ होई चैत ते सुबन फूली रहे, सावन में डर कृष्ण ही लोलना कुबरी संग।

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

संजय सावंत से आप गीत को सुने कि थोड़ा प्यार चाहिए। उजाला रेडियो है ये, हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबाहूबा लबालूबा दुम तक दुम